0: लोग स्क्वाश करते हैं। बहुत बार हम इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज के लिए भी कार्यक्रम करते हैं कि बैंकिंग किस तरीके से करना चाहिए, कोशिश हम चलाते हैं वो भी हम वर्कफोर्स चलाते हैं। तो ये बहुत सारी है कि जहाँ पे हम बच्ची से लेकर सीनियर सिटीजन तक के लिए हम काम करते हैं। ये हो गया पहला सवाल।
1: कितना अंतर है एक सामान्य बच्चे को पढ़ाना, शिक्षा देना और श्रवणबाधित जो बोलने में समझ रहे हैं उनको सिखाना, कितना कठिन होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है?
0: जी, अब जो बच्चा एजुकेशन के लिए स्कूलिंग सिस्टम में जाता है, एक सामान्य बच्चा, ठीक है, सामान्य बच्चे के जो गोल्स होते हैं एजुकेशन के, वो सेम गोल्स हियरिंग इम्पेयर्ड या श्रवणबाधित बच्चों के भी होते हैं। ओके, जनरल गोल्स सेम रहते हैं। आप ऐसा सोचिए कि एक बच्चा है जिसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, अब उसको सुनाई नहीं देता है हियरिंग लॉस की वजह से, उसके भाषा में प्रॉब्लम, लैंग्वेज में इश्यू एंड कम्युनिकेशन में इश्यू, तो एक चीज तीन चीज से जुड़ी हुई है। अब ऐसे बच्चों को जब हम एजुकेट करते हैं तो अगेन इसके अंदर दो पहलू आ जाते हैं। एक ग्रुप जहाँ पे हम हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट लिसनिंग डिवाइसेस से हम सिखाते हैं, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि एक ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। तो जनरल गोल्स तो आपके हो गए कि नॉलेज का डेवलपमेंट करना है, स्किल्स को डेवलप करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट बेसिकली मतलब आपका बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट हो गए जनरल गोल। पर जब मैं स्पेसिफिक गोल की बात करती हूँ तो स्पेसिफिक गोल है आ गया मेरा इस बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट करना, स्किल्स डेवलपमेंट करना, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना। अब कम्युनिकेशन भी कितनी चीज़ों से जुड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल अब हम साथ में बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, सर मेरी उंगलियां भी चल रही है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन भी हो रहे हैं, मेरे आसपास की यू नो इट्स गोइंग अप एंड डाउन एंड बहुत सारा बॉडी लैंग्वेज है, स्माइल है, और जो मैं महसूस कर रही हूँ वो मैं बता सकती हूँ, ठीक है। नाउ यू इमेजिन अ चाइल्ड जिसको जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास भाषा नहीं है। तो कम्युनिकेशन इज सच अ वेरी बिग इम्पोर्टेंट रोल। कम्युनिकेशन करने के लिए भाषा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भाषा नहीं है तो वो समाज में किस तरीके से उठेगा बैठेगा, वो समाज में इंटरैक्ट कैसे करेगा और पार्टिसिपेट कैसे करेगा, वो जो महसूस करता है या करती है वो किस तरीके से व्यक्त करेगा। तो जो एजुकेशन है, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट की जो एजुकेशन है, वो ये सारी पहलुओं को देखकर हम उसका एजुकेशन का विकास करते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एजुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इज पेरेंट्स का एम्पावरमेंट करना। तो पेरेंट्स के लिए हम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं कि बच्चे को हियरिंग एड किस तरीके से लगाना है या कॉकलियर इम्प्लांट है तो किस तरीके से लगाना है, अगर हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट में कुछ भी रिपेयर्स हो रहे तो उसको सिंपल रिपेयर्स किस तरीके से करना है, और अगर बच्चा हियरिंग एड और कॉकलियर इम्प्लांट नहीं लगाता है, सांकेतिक भाषा से बात करता है, इशारों में बात करता है, इशारे इज अ वेरी सिंपल टर्म जिसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं, और सांकेतिक भाषा में अगर बात करता है या करती है तो पेरेंट्स को भी आनी चाहिए सांकेतिक भाषा, तब तो कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होगी। बहुत सारे एडिशनल गोल आ जाते हैं जब हम एजुकेशन और हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे की बात करते हैं।
1: यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर और बातें करते हैं। कौन सा गाना सुना है?
0: मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, ये गाना बहुत पसंद है,
1: ये गति ये बतिया।

देती है और पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता होगा पेरेंट्स को सिखाना कौन सी प्रणाली होती है, कैसे आप सिखाते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं उनको। पेरेंट्स के लिए नाउ यू इमेजिन अ फीमेल हु इज प्रेग्नेंट एंड हर फीमेल को लगता है, हर माँ बाप को लगता है, हर फैमिली को लगता है कि जो बच्चा होगा वो काफ़ी हेल्दी होगा। ओके, इट्स नॉर्मल बट चाइल्ड इज बॉर्न एंड यू कम टू नो कि मेरे बच्चे को हियरिंग लॉस है, तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है एक्सेप्टेंस। उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि ओके ओके। दूसरी चीज ये है कि या तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या तो बिल्कुल भी प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं, बैलेंस अप्रोच कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिसिंग हो जाता है, तो वो भी उनको बताना होता है कि किस तरीके से एक बैलेंस अप्रोच रखना है, ना कि यू नो ओवर हो या अंडर हो। यू हैव टू कंसिडर योर चाइल्ड अलग हो, इसलिए मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो उसे भी अपनापन लगना चाहिए और मैं इसी घर का एक हिस्सा हूँ, ये उसे समझना बहुत जरूरी है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पेरेंट्स को एजुकेशन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, अगर इन्वॉल्व हुए तो यस द चाइल्ड कैन प्रोसेस या प्रोग्रेस आराम से। क्योंकि हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कोर्सेज करने के लिए, चाहे डिप्लोमा हो या बैचलर्स हो, जिनके खुद के बच्चों को या तो हियरिंग लॉस हो या कोई कंसर्न हो, वो खुद भी आते हैं। क्योंकि जब तक पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा कि इन बच्चों में क्या कंसर्न हैं, तो वो बच्चों की डेवलपमेंट में कैसे भागीदारी ले सकते हैं। तो स्कूल के साथ जुड़े रहें, लगातार या फॉलो अप ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ करते रहें। टीचर्स के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपका बच्चा सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है तो आप खुद भी सीखिए सांकेतिक भाषा, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत बार ये देखा गया है कि क्या होता है कि पता तो चल जाता है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है, ओके, बट माँ या फादर बाकी फैमिली मेंबर्स को बताते ही नहीं है कि बच्चे को कुछ इश्यू है, रिश्तेदारों को और बाकी लोगों को बताते ही नहीं है, घर के मारे शर्म के मारे कुछ बताते ही नहीं है। अब इससे क्या होता है, शाम को सोच कि मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ तो इश्यूज है, कंसर्न है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बट इंटरवेंशन बहुत टाइम के बाद होता है, 4 साल 5 साल के बाद हो जाता है। तो ये जो गैप है आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन का, ये बढ़ते जाता है, तो ये कहीं ना कहीं कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उनका माइंडसेट कैसा है पेरेंट्स का, दैट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो यस द चाइल्ड कैन प्रोग्रेस। ऐसा नहीं

0: वो भी सीखी है, कुछ सफर बनाया है उड़ीसा में। सो देर आर मेनी हु आर हैविंग हियरिंग लॉस और एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं। हम हियरिंग लॉस के क्षेत्र में डॉक्टर मदन मशिष्ठ का नाम लेते हैं हमेशा, वो खुद ही हियरिंग इम्पेयरमेंट है उनको है, जागृत यूनिवर्सिटी में डीन रह चुके हैं। सो इट इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट टाइमली और अप्रोप्रिएट सपोर्ट सिस्टम लेके अगर हम काम करें तो इट सीम्स आर पॉसिबल।
1: तो किन किन क्षेत्रों में ये बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादातर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है?
0: देखिए अभी जैसे मैंने कहा कि हियरिंग लॉस की वजह से लैंग्वेज स्पीकर कम्युनिकेशन अफेक्टेड है, ओके। तो अगर ये तीन चीज आपने सही टाइमली एप्रोप्रिएटली डेवलप कर दी तो बच्चे को कोई कंसर्न इश्यूज नहीं आएंगे। हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट हियरिंग इम्पैक्ट है जो बी एस एल पी जिन्होंने कर चुके हैं, ओके, ऑडियोलॉजी का कोर्स कर चुके हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं अभी, ओके। एजुकेशन के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा से यू विल फाइंड जो गेस्ट टीचर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं बच्चों के साथ। टीचर के क्षेत्र में मैंने बहुत सारे देखे हैं, प्लस यू विल फाइंड मेनी पीपल इन आई आई एम आई आई टी ऑल्सो यू विल फाइंड। तो

0: बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, जैसे हमें बताइए कि कैसे पहचाने कि किसी बच्चे को हियरिंग लॉस है, मतलब वो सुनने में असमर्थ है, प्रारंभिक अवस्था में कैसे पहचान होती है?
1: फॉर सिंपल एग्जाम्पल, अगर मैं फैमिली सेटअप से बात करूँ तो आप दूर से आवाज बुला रहे हैं बच्चे का, राहुल राहुल राहुल, बच्चे का प्रतिसाद नहीं दे सकता है। आपने सिखला के बात किया, कभी भी प्रतिसाद नहीं कर रहा है, देयर इज नो चेंजेस इन एक्सप्रेशन। हमें जब आवाज आती है तो हम उस तरफ देखते हैं, ओके, जहाँ से आवाज आती है हम उस तरफ देखते हैं, तो बच्चा वहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अगर बहुत जोर से कोई आवाज आती है तो हम नॉर्मली दस सकते हैं वी स्टार्टल, ओके। अगर बच्चा स्टार्टल नहीं करता है या दचकता नहीं है, दीज आर सर्टेन साइंस जहाँ पे बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अगेन की घंटी वगैरह एंड द चाइल्ड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग डोर बेल, तो एनवायरमेंटल साउंड को अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है या फाइन साउंड जैसे स्लीप साउंड को वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो यस द चाइल्ड कैन हैव इश्यूज। बहुत बार क्या होता है कि हियरिंग लॉस उतनी मात्रा पे नहीं है, माइल्ड मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर है, तो उन बच्चों को पहचानना लेवल पे है और उसकी जाँच करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको रेगुलर स्कूल में मिल जाएंगे, जनरल स्कूल में मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे बच्चे को लॉस तो है बट आप अगर थोड़ा जोर से बोलते हो तो बच्चा रिस्पॉन्ड कर लेता है। बट वेन यू से टर्न पेज नंबर दिस, तो पेज नंबर ये टर्न करना है, ये पूरा वाक्य समझना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगेन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ऊँचा बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंसर्न है, एक रिस्पॉन्स है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और अगर ऐसा कोई

0: कॉग्निटिव प्लान लग रहे हैं या हमको साइन लैंग्वेज का है सपोर्ट चाहिए, क्या करना है तो हम प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं।
1: तो दिस इज द बेसिक। और शुरुआत में कोई चीज पता चल जाती है तो उसका इलाज भी संभव है। छोटी मोटी तकलीफ है, छोटी मोटी समस्या है तो उसका इलाज भी संभव है। यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना?
0: पल पल दिल के पास
1: सुन जाती हो?
0: हाँ जी।

0: श्रोताओं को बताइए कि ये सुनना और बोलना जुड़ा हुआ है। तो सुनने में समस्या होती है, निश्चित रूप से उनको बोलने में भी समस्या होती है। ऐसा भी होता है कि बोलना बहुत स्मूथ होता है और सुनने में प्रॉब्लम होती है।
1: इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट दो अलग अलग डिसेबिलिटी है, ठीक है। अब पहले हम चलते हियरिंग इम्पेयरमेंट थी, इसलिए मुझे भाषा वाचा और संकेतन में तकलीफ होगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि मुझे कितना हियरिंग लॉस है, ओके। उसके हिसाब से डिसाइड होगा भाषा भाषा और संकेतन कितना अफेक्टेड रहेगा। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में प्रॉब्लम आएगी और भाषा वाचा और संकेतन में प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल ही बिल्कुल स्पीच इम्पेयरमेंट टोटली एक एग्जाम्पल बात करते हैं तो बात करने के लिए जो जो ऑर्गन्स या इन्वॉल्व हैं, ओके, जो भी आर्टिकुलेटर्स इन्वॉल्व हैं या जो वोकल फोल्ड्स हैं या जो भी इन्वॉल्व हैं, ओके, वो एक टोटली डिफरेंट क्षेत्र है। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में तकलीफ हो सकती है, पर मैं बात नहीं कर सकती हूँ। मेरी स्टटरिंग या स्टामरिंग है या मुझे कोई भी स्पीच रिलेटेड कंसर्न्स है, बट दैट डजंट मीन कि मुझे हियरिंग लॉस भी है। ये दो तो पहले जब हमारे पास पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट था तब भी हार्ड हेड की डेफिनेशन थी हमारे पास एंड एफेक्ट प्रॉपर डिसेबिलिटी था। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जब आया 2016 इम्पेयरमेंट अलग हियरिंग इम्पेयरमेंट अलग एंड दोनों के टेक्निक मेथड्स सिखाने के तरीके एंड थेरेपी सेशंस काफी अलग है। तो ये दोनों चीजें अलग हैं
0: बिल्कुल। और कुछ बच्चे जो बोल तो सकते हैं लेकिन ठीक से नहीं बोल पाते हैं, वो हथलाना कहते हैं,
1: राइट राइट राइट। हाँ
0: तो उनके लिए भी
1: उनके लिए भी थेरेपीज होती है। एंड जैसे आपने खुद ने पहले कहा जितना जल्दी आप जानोगे उतना जल्दी आप उसका निवारण कर सकते हैं, उतना जल्दी इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा हथलाता है तो आप उसको प्लीज एक इंटरवेंशन प्रोग्राम में लेके जाएं या थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं। उनकी कुछ बच्चे हैं जिनको हियरिंग इश्यूज है, कुछ बच्चे हैं जिनको स्पीच इश्यूज है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक सशक्त ऐप बनाया है, तो वो ऐप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बच्चे को रेड फ्लैग है कि ग्रीन फ्लैग है, ओके। वो स्क्रीनिंग करने में काफी आसानी होती है कि हाँ वो बच्चा कौन से ग्रुप में फिट होता है, ताकि आपका इंटरवेंशन प्रोग्राम या थेरेपी प्रोग्राम उस तरीके से बन सके।
0: सामान्य स्कूल में सामान्य विद्यालय में पढ़ते हैं तो टीचर्स का शिक्षक का किस तरह का सहयोग होना चाहिए, क्या भूमिका होती है? कुछ
1: जो जनरल टीचर्स हैं, जो रेगुलर टीचर्स हैं, उनकी बहुत सारे अलग अलग यू नो डिसेबिलिटीज के बच्चे होते हैं उनके क्लास में भी, तो उनके लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको मालूम है कि आपके क्लास में ऐसा बच्चा है जिनको सुनने में तकलीफ है, तो उस बच्चे का आप सिटिंग अरेंजमेंट सही करें, मतलब उसको ठीक सामने बैठाएं, ताकि उसका हियरिंग एड जो एम्पलीफाई करता है साउंड या वो कॉपर इम्प्लांट यूज करता होगा या जो आपको स्पीच रीड करता होगा आपकी तरफ देखते सुनो वो समझता होगा, तो उसमें काफ़ी मदद हो जाती है। तो सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से रखें, क्लासरूम नॉइस को जितना कम कर सकते हो उतना अच्छा है, ताकि आप जो बात कर रहे हैं या जो उसका पीयर ग्रुप है जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं जो वो बात कर रहे हैं उनको वो ध्यान लेके समझ सके और सुन सके। दूसरी क्लास में और उनको बोले आप बैठो और ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल। तो इम्पॉर्टेंट है पेरेंट का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, जब उनको लगे कि यस इसमें विषय पढ़ाने में ये तकलीफ हो रही है तो मैं इसको किस तरीके से पढ़ाऊँ, तो सपोर्ट रियली हेल्प बिकॉज जिस तरीके से पढ़ाते हैं उनका मेथड्स और टेक्निक्स काफ़ी अलग होता है, तो वो बहुत हेल्प कर सकते हैं जनरल एजुकेटर्स को कि हम किस तरीके से

0: रही है, बच्चा सुन तो रहा है, अगर मशीन खराब हो गई है तो अगर आप ठीक नहीं भी कर सकते तो पेरेंट्स को बोल दो कि हाँ बाबा ये मशीन चल नहीं रही है तो आप ठीक करो, या माइनर रिपेयर करने आपको आने चाहिए। अगेन जैसे मैंने लास्ट कहा कि टीम नेटवर्क प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इफ देयर इज एनी कंसर्न आप उसको ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजें, पीएमटी के पास भेजें और स्पेशल एजुकेटर्स की सपोर्ट आप लें, तब जाके सक्सेसफुल होगी चीजें, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट।
1: तो क्या ऐसे बच्चों को कुछ मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है, क्योंकि एक सामान्य स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और सारे बच्चे उसको तो पता है कि वो सुनने में असमर्थ है, हियरिंग में चला रहा है, कुछ नहीं होता है, बोलने में असमर्थ है, तो वो जो हीन भावना के शिकार होते हैं उसमें

मतलब कि ठीक है और काफी रीइंफोर्समेंट हो रहे हैं तो उन बच्चों को ज्यादा इशू और कंसर्न नहीं आते हैं, पर जहाँ पे पेरेंट्स ने खुद ने एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरे बच्चे को ये कंसर्न है एंड पेरेंट और बच्चे के बीच का जो संबंध है वो सही नहीं है तो बच्चों को कंसर्न आएंगे ही आएंगे। इस टाइम भी उनको इन तरह के कॉम्प्लेक्स हो कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, मेरे से कोई क्यों नहीं बात कर रहा है, मुझे लोग अलग तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं, तो दैट कॉम्प्लेक्सिटी विल कम। तो ये तो हमारे साथ भी होता है, मुझे ये इंग्लिश भाषा बात करने नहीं आती है, सबके साथ इंग्लिश में बात करते हैं तो वो तो हमको भी लगता है ये स्वाभाविक चीज है। ये कंसर्न जहाँ पे एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है वहाँ मैंने ये कंसर्न बहुत ज्यादा देखे हैं। एक दूसरा जो बहुत ज्यादा देखा है मैंने वो है कि क्या होता है कि पहले समझो बच्चा स्पेशल स्कूल में गया या थेरेपी सेंटर में गया, वहाँ पे पेरेंट्स को लगा और टीचर्स को लगा कि हाँ बाबा मेरा बच्चा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, वो सब कुछ अच्छे से कर रहा है। उसको स्पेशल स्कूल सेटअप में जहाँ पे सब स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल टीचर है एंड उसको वहाँ से पिक करके उन्होंने प्लेस कर दिया है रेगुलर स्कूल में। अब वो रेगुलर स्कूल में बाकी सब एक सामान्य बच्चे, एक जनरल टीचर, उन्होंने कभी ऐसा बच्चा देखा नहीं उसको पढ़ाने का तरीका, जिस तरीके से वो दिखता तो बिल्कुल सेम है ओके, बट वो हियरिंग एड है और मोस्टली कभी वो इशारे करता है तो वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो वहाँ पे अगर वो कोप अप नहीं करता है ओके, बाकी वो इन्वायरमेंट और सराउंडिंग है फिर क्या होता है वहाँ से हम वापस उसको स्पेशल स्कूल में लेकर आते हैं, रिवर्स इंटीग्रेशन करते हैं। इस प्रोसेस में द चाइल्ड फेसेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम, डेवलप नहीं है चाहे वो मौखिक भाषा हो या सांकेतिक भाषा हो, अगर उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं है एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट, खराब साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा सिनेरियो है, कौन सा सिचुएशन है, दैट इज एन इम्पोर्टेंट रोल। एंड समटाइम्स आई फील कि जो बिहेवियर्स हैं हम सबके वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसके सिक्योरिटी गार्ड उसको कैसे डील करते हैं,

जो हियरिंग इम्पेयर होते हैं वो मोस्टली विजुअल लर्नर्स होते हैं, दे आर मोर ऑफ विजुअल्स. ओके, तो आपका बर्ताव, आपका एटीट्यूड, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं.

हियरिंग लॉस होता है वो दो ग्रुप में होते हैं बेसिकली। एक ग्रुप जो हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता है और उसका वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप होता है, हम उसके उनके इसमें मौखिक भाषा किस तरीके से विकास हो उसके ऊपर हम स्टेप्स लेते हैं। दूसरा ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इशारों की भाषा बोलते हैं या विजुअली फेशियल मैनुअल कम्युनिकेशन हम जिसको बोलते हैं, ये एक ग्रुप होता है ठीक है।

करेगा या कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कर दी तो मेरा बच्चा बात करेगा। तो इसमें और इसमें बहुत सारे हैं जो दिखाई नहीं देता है और मैं ऑप्शन के पास जाती हूँ, ऑप्शन मुझे चश्मा देगा और मुझे तुरंत दिखाई देगा और वो आपका सभी का ठीक है। के पास जाते हैं, वो अलग अलग श्रवण यंत्र ट्राई करते हैं, फिर वो गेम देखते हैं और उसके बाद आपको एक हियरिंग एड दिया जाएगा। हियरिंग एड लगाने के बाद तुरंत बच्चा बात नहीं करता है, उसके बहुत सारे श्रवण प्रशिक्षण के बहुत सारे तरीके सेशन होते हैं, उसको सिखाया जाता है ये आवाज़ कौन सी है, इस आवाज़ का मतलब क्या है, आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस ओके एंड अ टीडियस प्रोसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी से आपको काम करना होता है। फिर ये एक लर्निंग मोड है जहाँ पे अगर लगता है कि हाँ बच्चे ने श्रवण यंत्र करना है तो उसका ऑडिटरी ट्रेनिंग या श्रवण प्रशिक्षण आपको लगातार करना होगा। हियरिंग एड आपको लगातार पहनना होगा एंड चाहे वो कॉकलियर इम्प्लांट हो या हियरिंग एड हो आपको करना बहुत जरूरी है। भाषिक वातावरण होना चाहिए, जितना ज़्यादा आप लैंग्वेज इनपुट दोगे उतना ज़्यादा आप लैंग्वेज आउटपुट होगा, जितना लैंग्वेज इनपुट नहीं है उतना आउटपुट इज अफेक्टेड।

की अपनी आइडेंटिटी भी बनेगी। मम्मी स्पेसिफिकली एंड चिल्ड्रन विद हियरिंग इंपेयरमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब देखिए जब हम भाषा की बात करते हैं तो अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं मैथमेटिक्स का, अगर मैं लिखूंगी 26 + 24 कितना होता है इन डिजिटल फॉर्मेट, वो बच्चा करता है रूपांतर में दो मैथमेटिकल सम, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। बिकॉज अब जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ और जब मैं वो लिखती हूँ भाषा, मतलब एक टिपिकल मैथमेटिकल कंसेप्ट में जो भाषा का इस्तेमाल हो

0: quarto bolu, bolna. खोलना है ओके बुक इस तरीके से खोलती है ओके अगर मैं कहूँ कि मुझे डोर खोलना है तो दैट क्रिया इज डिफरेंट ओके प्रोसेस इज डिफरेंट सो वन वर्ड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेप्ट सो हेंस द कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगर संकल्पना में अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है तो इसके लिए बच्चों को आगे एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि बहुत बार आप देखोगे कि बच्चे क्या करते हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका वो की वर्ड देखते हैं और उसके हिसाब से आंसर लिखते हैं क्योंकि उनमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं होती है और बहुत बार रट्टा मारना करते हैं तो रट्टा मारा हुआ चीज लिखते हैं पर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो अंडरस्टैंडिंग प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अंडरस्टैंडिंग हुई तो बहुत सारी एकेडमिक डिफिकल्टीज तो चले ही जाएंगे प्लस आई एम अ टीचर तो मैं लिटरेसी डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ कि जितना ज़्यादा आप रीडिंग राइटिंग कराओगे उतना ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस होगा हाँ जितना ज़्यादा रीडिंग हो फॉर एग्जाम्पल छः महीने का अगर बच्चा है आप बोलोगे क्या मैं कराऊँ रीडिंग और राइटिंग हम क्या ही कराऊँ पर आप बुक खोल सकते हैं उसके सामने और बुक खोल के पढ़ सकते हैं तो जो विजुअल थिंग्स है ओके दैट गोज इन हिज हेड ओके बच्चा देख रहा है उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज इज ऑल्सो डेवलपिंग आप पेज टर्न कर रहे हैं टू यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ जब हम रीड करते हैं तो मुझे पेज टर्न करना है तो मैं रीड करता हूँ तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक जाता हूँ ना कि नीचे से लेके ऊपर All things compiled in the learning need for the
1: संबंधित जो बच्चे हैं तो इनकी समझदारी में खुद भी कुछ फर्क होता है सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत ऐसे जगहों पर ले जा रहे हैं अब उम्र अवॉइड करते हैं कि आने ले जाना ले जाना तो उनकी जो समझ थिंकिंग प्रोसेस है क्या बराबर होती है या कम होती है
0: आपका जब कॉग्निशन की बात करते हैं तो कॉग्निशन बहुत हायर लेवल राइट एंड उसके अंदर एक और चीज आती है जिसको हम मेटा कॉग्निशन बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसर्स आते हैं प्रोसेसर्स को समझने के लिए आपको एक यंत्र चाहिए आपको एक टूल चाहिए जो है भाषा ओके कोई भी चीज को समझने के लिए जैसे आई नो कि जो मैं बात कर रही हूँ ये माइक के माध्यम से डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज भी होना बहुत जरूरी उनको कुछ कॉग्निशन से जूझ हुआ है इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑल्सो वो काफी अच्छा प्रोग्रेस करते हैं बट अगेन सेम थिंग बॉइल्स डाउन टू लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट मेरे पास अगर भाषा ही नहीं है तो मैं आगे किस तरीके से वो प्रोसेस को समझूं या किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूं या

0: से प्रभावित करती है जो सीखने की मतलब लर्निंग प्रोसेस होती है। अभी गाने से पहले भी इस बारे में हम पढ़ा है।
1: हाँ, सपनों को हकीकत में बदल देती है, सही समय पर सही कदम उठाना।

चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। समझो हम ये रेडियो शो कर रहे होते और आप फ्रेंड्स से बात कर रहे होते तो मुझे तो पहचानती नहीं है, तो एक गुड हैव बीन वन वे कम्युनिकेशन क्योंकि मैं कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। लर्निंग सक्सेसफुल करने के लिए आप जो भी चीजें, जो भी मटीरियल आप बच्चों को देते हो या जो भी चीजों का इस्तेमाल करते हो बच्चे के लेवल के अनुसार होना चाहिए और उसको उसको पहुंच सके उसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दैट इज एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो मोर ऑफ होते हैं, ओके, तो आप कोई भी क्लासरूम देखोगे, अगर स्पेशल क्लासरूम देखोगे या अगर आप हमारे CBIC में आओगे उधर भी आप देखोगे बहुत ज्यादा विजुअल चार्ट होंगे, विजुअल

चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो मोर ऑफ होते हैं, ओके। तो आप कोई भी क्लासरूम देखोगे, अगर स्पेशल क्लासरूम देखोगे या अगर आप हमारे CBIC में आओगे, जैसे स्कॉल फैसिलिटी और लर्निंग एनर्जी सेंटर, उधर भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा विजुअल चार्ट होंगे, विजुअल थिंग्स होंगे, बिकॉज द टाइम इज मोर ऑफ विजुअल। तो टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स आपको अलग अलग लेने होंगे एंड अगेन आई रिपीट एक्सेसिबल होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप कंसेप्ट कंटेंट दे रहे हैं क्या वो साइन लैंग्वेज में उपलब्ध है या नहीं है, ओके। और अगर साइन लैंग्वेज में उपलब्ध नहीं है, जो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं

0: करते रहते हो, पढ़ाने के पहले भी करते हैं, पढ़ाने के बाद भी करते हैं और पढ़ाते समय बहुत बार हम मूल्यांकन करते हैं। बेसिकली दोनों का चेंज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वातावरण होना चाहिए तो माँ ही बोले जा रही है बोले जा रही है बोले जा रही है, नहीं बच्चे को भी मौका दो कि बच्चा भी बात करे, बच्चा भी वो प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। तो जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व करोगे बच्चे को हर प्रोसेस में उतना ज्यादा बच्चा प्रोग्रेस कर
1: सकता है। श्रोताओं को बताइए कि सरकार की कौन सी नीतियाँ हैं, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण नीतियाँ हैं इन बच्चों को जो शिक्षा में समर्थन देती है और बढ़ावा देती है।
0: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे वो बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे पास अलग अलग एक्ट हैं, चाहे वो RDWD एक्ट हो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो 2020 की, या शिक्षा स्कीम हो, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हम CM स्कीम ऑल्सो, हमारे पास अलग अलग स्कॉलरशिप के स्कीम्स हैं ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि एजुकेशन काफ़ी डिफिकल्ट है, यू नो मैं एजुकेशन कहाँ से लूँ और कैसे लूँ। एक सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई एग्जाम है हियरिंग इम्पेयरमेंट है और उसको BEd का कोर्स करना है, MEd का कोर्स करना है, DCBTi का कोर्स करना है तो उसके लिए फ्री है एजुकेशन, ओके दैट इज फॉर द स्कीम, फ्री है। अगर उसको कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना है या फ्री कोचिंग करना है तो इट इज़ टोटली फ्री। ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे उनको हियरिंग एड भी मिलता है कंसेशनल रेट से, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे लॉज आर इन प्लेस, स्कीम्स आर इन प्लेस, यहाँ पे मेडिकेशन भी देते हैं बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो ये सारी चीज़ें तो हैं इन प्लेस। पर जब हम गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन या लॉज या पॉलिसीज की बात करते हैं, यू स्टिल हैव टू यू नो डेवलप अवेयरनेस, और अवेयरनेस की आवश्यकता है अभी तक हमारे देश में कि अगर ये इशू है, अगर ये कंसर्न है तो मुझे कहाँ जाना है। ओके ये कहाँ जाना है ये अभी तक एक कंसर्न है, अभी भी हमको अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोविड के

करती थी एंड उसके पहले बहुत साल तक एनजीओ सेटअप में भी काम करती थी मैं एंड आई एम चार्ज इन द तो जब भी मैं बुआ के घर जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये इंसानों से बात कर रही है और मेरे पापा आराम से कम्युनिकेट कर सकते थे ये कुछ अलग है ये क्या है ओके सो व्हेन आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स आई

0: tror jeg, vi er ved en different potential. Enroll på noget her. Third is the accessibility. इस accessibility को भी हमें improve करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम इन सब awareness, accessibility, interpreter services and support system अगर हम और बढ़ाते हैं, तो yes, the government laws, policies जो हैं, implementation काफी अच्छे से होगा. हम documents में बहुत अच्छे हैं, implementation भी बहुत कर रहे हैं, but फिर भी अगर ये दो तीन चीज़ को line up हम करें, तो yes, the side can go much much higher level पे.
1: आप खुद इस संस्था में पढ़ाती हैं बच्चों को और आपके पास देश भर के बहुत सारे बच्चे आते हैं. कोई ऐसा निजी यादगार कोई घटना है आपके पास जो आप शेयर करना चाहती हैं?
0: मैं इस क्षेत्र में आई क्योंकि ऑन माय फर्स्ट

0: नोट जिस दिशा में मैं काम कर रही हूँ, पहले मैं वहाँ पे फैकल्टी थी एंड उसके बाद मैं अभी 2024 में आई थी किसी भी तरह डिपार्टमेंट। तो बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं ने कहा कि जो बैचलर्स करते हैं मास्टर्स करते हैं पी जी करते हैं और बहुत सारे वो क्वालिफिकली डेवलप्ड स्टूडेंट्स भी हैं, दोनों काफ़ी अलग हैं एंड दोनों का सीखने का तरीका काफ़ी अलग है। But these are all, you know, lessons. You understand so many things. और अगर मैं कहूँ कि मैंने इनसे क्या सीखा है, patience सीखा है ज़्यादा, मेरे में patience भी अभी काफ़ी अच्छा हो गया है and you understand अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे हम रिसर्च में कहते हैं थर्ड व्यू, ओके थर्ड व्यू बेसिकली मीन्स फ्रॉम रिसर्च एंगल, डिफरेंट तरीके से भी इसको देखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस इज द थिंग व्हाट आई हैव अंडरगॉन एज अ
1: बिल्कुल। भारत में श्रवण बाधित बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है तो इसे मजबूत करने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं भारत सरकार की ओर से?
0: कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की जब मैं बात करती हूँ तो अगर मैं जनरल स्कूल की बात करूँ तो जनरल स्कूल में जो टीचिंग स्टाफ है नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको समझना उनका एक्सेप्टेंस करना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ जैसे मैं आई थिंक स्टार्ट से कह रही हूँ वी नीड मोर डेवलपमेंट ऑन एक्सेसिबिलिटी, तो अगर हर चीज़ उनके पहुँच तक हो तो यस इट विल बी पॉजिटिव। At the end of the day, mindset plays a very important role. Positive mindset होना बहुत ज़्यादा important है।
1: जी, संक्षेप में बताइए जल्दी करते कि आपकी संस्था किस तरह से मदद करती है इन बच्चों को, क्योंकि देश भर से बच्चे आते हैं तो क्या क्या किस तरह की थेरेपी दी जाती है और क्या क्या डांस सिखाती है, फिर उनकी मदद कैसे करती है आपकी संस्था?
0: हमारी संस्था में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जिनको सुनने में तकलीफ होती है तो वी हैव एन ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे उनकी जांच की जाती है कि बच्चे को कितना सुनाई देता है कितना सुनाई नहीं देता है, उसको कौन सी हियरिंग एड से फ़ायदा होगा, अगर कॉकलियर इम्प्लांट करना है तो कितने हद तक। हमने रिसेंटली वर्टिगो टीम भी बनाया है, वर्टिगो एक क्लिनिक थेरेपी सेंटर बनाया है जिन बच्चों को सिंपल तरीके से बोलो कि बहुत बार लोगों को चक्कर आते हैं, सम पीपल से आई हैव अ वर्टिगो इश्यूज एंड ऑल, ओके सो दिस इज अ न्यू थिंग दिस इज बीइंग डेवलप्ड इन द डिपार्टमेंट। हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, जिन बच्चों को बात करने में भाषा में प्रॉब्लम आती है, स्टटर करते हैं, स्टैमर करते हैं, कभी कभी कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी कुछ शब्द नहीं बोलते हैं, तो उनकी थेरेपी

0: चलते हैं, डिप्लोमा से लेकर पीएचडी तक हम सारी लैंग्वेज के भी कोर्सेज चलाते हैं, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन। डिपार्टमेंट में हम कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, ताकि जो हमारे तक नहीं आ सकते पहुँच सके रीच बियॉन्डी, तो हम वहाँ जाके कैंप और अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं और उनको हियरिंग एड्स या उनको जो जरूरत हो क्योंकि वो हम देते हैं।
1: जी, तो आपके संस्था से कोई संपर्क करना चाहे तो क्या कुछ कर सकता है, मेल के जरिए और

0: सॉरी मेरा ये मिलेंगे यही दैट ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन दी वेबसाइट इटसेल्फ।
1: बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है डॉक्टर रेड्डी, और मुझे लगता है देश भर के हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे, जिन्हें भी जिनके घर में जिन बच्चों को जिन बड़ों को ये लॉस है या बोलने में दिक्कत है, तो बहुत अपने से ही जहाँ इलाज संभव करें, नहीं तो आपकी संस्था से शुरुआत कर सकते हैं। और चलते चलते कोई गाना सुनवाना चाहेंगे
0: जगजीत सिंह का? कोई भी गाना, आई जस्ट लाइक हिम और लाइक हिज वॉइस अ लॉट, सो एनी सॉन्ग ऑफ जगजीत सिंह इज ओके।
1: तुमको देखा तो ये ख्याल है
0: ऑल गुड।
1: तो

0: आर्किटेक्ट स्टूडियो में आ पा रही हूँ और इतनी सारी जानकारी दी। और ये एक ऐसा विषय है जो इस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जो लोग इससे पीड़ित होते हैं वही लोग परेशान होते हैं। तो हमारा भी श्रोताओं से यही कह रहा है कि जहाँ कहीं ऐसे बच्चे हैं उनको सपोर्ट करें, मानसिक रूप से सहयोग दें। आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत
1: thank you to you Santa Pam, and thanks to Vidyarthi, the whole team. They are very cooperative and the way they are dealing with everything.

होते डॉक्टर गायत्री आहूजा से रेडियो सिटी ममता सिंह की बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बल

0: स्टिग्मेटिक व्यवस्था का बिना संदेश आकर स्वानिति धरती के लिए श्रोताओं हम बोल रहे हैं एफएम के 1.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से। अब आइए जुड़ते हैं विविध भारती के रास्ते से बसे और सुनते हैं कार्यक्रम साया जी।
1: उसके जीत से बाहर आ गई थी जिंदगी में, पर अचानक वक्त

होती रहे, इजहार मोहब्बत होती रही, पर मुलाकात में शिकवे शिकायत के रंग घुल गए। रूठने मनाने का सिलसिला तेज हो गया। नजदीकियां दूरियों में तब्दील होने लगी, नजरें खफा हो गई, पारदर्शी दिल पर धुंध छा गई, गुफ्तगु खामोशी में बदल गई और फिर जिंदगी को उदास रंग

से कवर जाती है जिंदगी। इश्क तुम्हें जब दिल जकड़ जाता है लेकिन जिंदगी कभी एक सिर में नहीं जाती। जिंदगी के घाट पर विविध रंगी राग गाए जाते हैं।

जाते हैं, मोहब्बत के लिए वक्त कम पड़ जाता है, तकरार की घड़ियां लंबी हो जाती है, मोहब्बत और तकरार से मिलकर बनती है जिंदगी। जब मोहब्बत भरे लम्हों से आबाद होती है जिंदगी, दो दिल लौटते हैं।

पर उसी की बातें दर्ज हो गई। दुनिया की जिस पर पड़े थे की बजाय हवा में उड़ने लगा। बस उसी रोज के दिन

पोल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स

0: गुरुवार को फिलहाल देंगे तो जरूर मुझसे पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पत्र नोट करें, मन की बात राजवाड़ी संसद मार्ग नई दिल्ली 1800।
0: आपको नमस्कार। मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

मन में जिंदगी बसी होती है। सपने सपने हुए लम्हे हम दोस्त बन सकते हैं।

किसी भी कीमत पर लम्हों को लौट जाना नहीं सकता। तो इसलिए कोशिश यही रहे कि हम पूरे दिलों जान से हर लम्हे का आनंद लें, हर समय हर लम्हे को बनाए रखें। फिलहाल इसको बता दें वही सम्पन्न

में जितने एनईपी शामिल है तो यह फोकस ही कर रहा है। और इस इंस्टीट्यूट की खासियत यह है कि हम लोग स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं जो कि हमारे प्रधानमंत्री भी करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वी आर करिकुलम यहाँ पर बच्चों को जो कोर्स हम लोग पढ़ाते हैं जो एक यूनिट खत्म होता है हम उनको फैक्ट्री विजिट पर और साइट विजिट पर भेजते हैं। फॉर टेक एन एग्जांपल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन है स्लैब कंस्ट्रक्शन है वन वे स्लैब है टू वे स्लैब है कैंटिलीवर है बीम्स है तो अगर बच्चों को हमने हम उनको हम बच्चों को वहाँ भेजते हैं जो चीज आप क्लास में पढ़ रहे हैं उसको अगर आप उनको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं तो हम उनको सीवेज डिस्पोजल सिस्टम दिखाने भेजते हैं स्कूल का जो टाउन फिल्ट्रेशन प्लांट है डिस्पोजल हम वहाँ भेजते हैं। इसी तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम उनको फैक्ट्री विजिट पर भेजते हैं ताकि वो इस चीज को जो क्लासरूम में थ्योरी पढ़ रहे हैं उसको वो कोरिलेट कर सकते हैं प्रैक्टिकल से। साथ ही साथ जैसे आपने देखा कि जेओटी ने अभी सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में इंटर्नशिप असेंशियल किया है तो वी हैव टाइड अप विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जो कि उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देती प्लस हमारे कैंपस में भी और सब पॉलिटेक्निक में शायद नहीं हो हमारे यहाँ सी एन सी मशीन है थ्री डी प्रिंटिंग मशीन है और भी हम बहुत सारे इक्विपमेंट लाने जा रहे हैं। हमारे जो स्ट्रेंथ है वो हमारे लैब्स हैं यहाँ पर अनेक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स और गैजेट्स हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स अपने आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हासिल करके अपने एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा हमारे यहाँ 20 और 25 क्लब्स बने हुए हैं जैसे लाइक एक्सेल प्रो क्लब डिबेटिंग सोसाइटी क्लब क्रिएटिव राइटिंग क्लब ये भी बहुत फैसिलिटी जहाँ उनसे पर्सनैलिटी पर लिखा है और वो उनको प्लेसमेंट में हेल्प करेगा। हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ बच्चे क्रिकेट फुटबॉल को लेकर हम लोग उसको भी मुहैया करा रहे हैं ताकि हमारे बच्चे को इन हाउस इन कैंपस सब कुछ

पर्सन देखना चाहती है, कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट देखना चाहती है और स्पेशली डिसीजन मेकिंग एबिलिटी देखना चाहती है। तो बीबीए कोर्स के द्वारा हम इन्हीं सब इश्यू को एड्रेस करते हैं।

डिप्लोमा में मैं ज्वाइन की हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। मेरी पढ़ाई अल कबीर पॉलिटेक्निक से भी कंप्लीट हुई है। अल कबीर के बारे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अल कबीर कॉलेज है और हमारे यहाँ लड़कियों के माहौल बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। अल कबीर एक बेस्ट पॉलिटेक्निक आता है झारखंड में, जो कि अब हमारा डिग्री कोर्सेज भी

0: रहा हूँ बीसीए कोर्स है, कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स है, मेरे को इंटरेस्ट भी है बीसीए में और मजा भी आता है। और कभी इसका एनवायरमेंट में देखते हो तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ गया।
1: मेरा नाम ऐश्वर्या रानी है, ललमटिया से रहती हूँ और काफी पुराना और झारखंड का प्रसिद्ध नामी कॉलेज है। यहाँ का पढ़ाई वातावरण सबसे काफी बेहतर है। पहले सजावट था सोचने में आगे समझने में सब चीज में सुधार हो चुकी है। माई सेल्फ

कभी ध्यान नहीं सपनों की। श्रोताओं, ये प्राइवेट कार्यक्रम अभी तक सुन रहे थे, हम अपने आपको इसका भाग दो सुन दिया। एफएम के 104.5 समझ लीजिएगा, एफएम के 104.5 पर

विश्व पर्यटन दिवस घोषित किया।

थे महेंद्र कपूर और बोलते थे संगीत दिया था रविंद्र जैन ने। श्रोता बता दें अब 3 जून है और 3 जून को

de Deus, tomar a justiça.

0: a contradictory hard to mix. One thing that is so bothered.
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है,

के साथ तो मेरे जीवन में मौका मिला है। कुछ लोग जन नहीं भी किए कि राजस्व की नीति में कुछ लोगों ने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया है,

ये आयोजन भी काफी सराहनीय रहा। सैकड़ों बच्चों बच्चियों ने बताया कि पेट्रोल का उपयोग यदि किया जाए तो पेट्रोल की बचत तो होगी होगी, साथ ही साथ

it's not to be like,

कंपोजर प्रियंका गणेशना, सोनू निगम की आवाज में आयत संती है, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में मन प्रियंका गाना, गीत समीर का है, संगीत संजीव दर्शन का।

ने इंद्रधनुष के अंतर्गत रागों पर आधारित कार्यक्रम राग अनुराग। पहला गाना हमने राग अनुधारक पर लिया है, इसे गाए हैं मन्ना डे ने। गीत चयन का है संगीत एस सी बर्मन का, फिल्म का नाम मेरी सूरत तेरी आंखें।

आज की रात के गायक कलाकार हैं सुमन कल्याणपुर और कमल बाहू। ये साहिर का है संगीत रोशन का।

0: से पूछ, वो जो लाल पीली है वो तो अपनी नहीं हो सकती, ये लंबा लिफाफा भी अपना नहीं लगता। अब बच गए ये दो पोस्ट कार्ड और तीन लिफाफे, इन्हीं में से कोई अपनी चिट्ठी हो सकती है। क्या कर देगा, द्वारका आज भक्ति में आया नहीं। वो रहा रंगू, रंगू मैं कैंटीन में चाय पीने जा रहा हूँ, बोल पत्र मेरी चिट्ठी जरा लाकर देना। आई है क्या? हाँ हाँ आई है। अच्छा अभी आया,
1: ये रही आपकी चिट्ठी।
0: हाँ
1: अब एक खुशी में मुझे भी एक चाय पिला दीजिए।
0: अरे हाँ भाई हाँ, और मैनेजर साहब मेरे नाम पर एक चाय रंगू को भी। अच्छा रंगू मैं करता हूँ।
1: अच्छा
0: अब देखने से तो ऐसा लगता है कि ये चिट्ठी मन्ना की है।

चिट्ठी आई, ओ क्या लिखा है? अब मैं क्या जानू क्या लिखा है, द्वारिका आज काम पर आया ही नहीं। अरे भाई तू लक्ष्मण से बनवा लेते। देखो बिहारी, लक्ष्मण वही काम करता है जो मैं करता हूँ, बल्कि जो मशीन लक्ष्मण से ठीक नहीं होती उसे मैं चला रहा हूँ, लेकिन उसी काम के लिए उसे 1,500 रुपए मिलते हैं और मुझे 1,000 रुपए। मैं उससे बनिया की चिट्ठी नहीं पढ़वाऊंगा, वहां से का नहीं। अरे बुद्धू, कहाँ पढ़ा लिखा लक्ष्मण और कहाँ अंगूठा छाप तुम। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे हाथ में हुनर है, लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट जो है, कितना फर्क है तुम दोनों में। हाँ उतना ही जितना आदमी और जानवर में है। नहीं सिद्धू, मैं ये नहीं कह रहा। और नहीं तो क्या, मशीन पर लिखा हुआ मशीन का नाम जब मैं नहीं पढ़ पाता हूँ ना, तब मुझे लगता है मैं अंधा हूँ, सांस रहते हुए भी अंधा। देखो सिद्धू, इतने दुखी होने की कोई बात नहीं है, तुम रोज रात को पढ़ने तो जाते ही हो, थोड़े दिनों में सब सीख जाओगे। अरे जब सीखूंगा तब सीखूंगा ना, आज तो नाव भंवर में फंस गई। मैं सिद्धू, अगर तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी होती तो मैं जरूर पढ़ देता, लेकिन मनिया की चिट्ठी है तुम तो जानते ही हो। अरे जानता हूँ कि मनिया के पिताजी तुम्हारे पिताजी के यहाँ शादी की बात करने गए थे, लेकिन अब तो बात खत्म हो गई ना। बात किसने खत्म की? अरे तुम्हारे पिताजी ने, उनको पूरा दहेज चाहिए था। तुम्हें तो मालूम है मैंने पिताजी को कैसा पत्र लिखा था। मनिया जैसी सुंदर बूढ़ी पढ़ी लिखी लड़की से दहेज लेकर उन्होंने देखो सोचा ही क्या। अब जाने भी दो बिहारी, सुबह की आई ये चिट्ठी, अब पढ़ भी दो यार।

0: से मेरी और बिहारी की शादी की बात चलाने गए थे। दहेज की मांग पर बात टूट गई थी। हमारी बिरादरी में तो कभी दहेज का लेन देन हुआ ही नहीं। वे लोग अब खुद मेरे पिताजी से मिले, बोले हम शादी करने को तैयार हैं। उनके जाने पर मैंने भाई से साफ साफ कह दिया कि अब मैं तैयार नहीं। मैंने ये भी बता दिया कि पिछले महीने मेले में मैंने सिद्धू को देखा है, मुझे पसंद है। पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या, पढ़ लिख जाएगा, माँ के पेट से थोड़ी कोई पढ़ कर आता है। तुम बिहारी को कुछ मत बताना, तुम्हें मेरी कसम। मेरी गाय को बछड़ा हुआ है। चिट्ठी का जवाब जाने तो क्या कहूँ, तुम्हारी मनिया। देखा, इसीलिए मैं नहीं पढ़ रहा था। अरे अब जाने दो, अब एक काम और करो, जैसे उसकी चिट्ठी पढ़ ही है ना, वैसे ही मेरी तरफ से एक चिट्ठी लिख दो। ना बाबा ना, मुझसे नहीं लिखी जाएगी। अरे क्यों नहीं लिखी जाएगी? मान लो मनिया के पिताजी मेरे पिताजी की बात मान गए तो?
1: अरे तब तो मनिया को और अच्छा वर मिल जाएगा।
0: मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ, तुम तब तक चिट्ठी पूरी कर देना।

0: et donc va faire effectivement capture. Nous sommes comme ça, ça, ça. Moi, je suis comme Harry Potter. Yani tumhari aur se bihari ke kuch mile acha maine chitti padhi padhi tay kar liya ab tumhe chitti padhi likhungi jab tum use padhne layak ho jaoge acha na tum bhi mujhe apne haath se hi chitti likhoge mahine do mahine jitna bhi lag jaye samjhe main intezar karungi aage puri zindagi padi hai tum siddhu hoge buddhu चिट्ठी लिखी और पढ़ी जाती है जो लिखाई और पढ़ाई जाती है उस चिट्ठी नहीं रह जाती
1: अरे बात क्या है कुछ बताओगी नहीं कि बस पहेली ही बुझाती जाओगी
0: बस यही समझ लो कि मैं चिट्ठी पढ़ती जा रही थी

0: अपने को मन हुआ तो खुद चिट्ठी बनकर आ गए। अच्छा अब अपने कहो कैसे हो, कहाँ रहते हो?
1: अरे देख तो रही हो, बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ सुनो, मैंने अपना कमरा भी ले लिया है फैक्ट्री की कॉलोनी में।
0: अच्छा
1: तुम्हें मालूम नहीं कि एक महीने से ऊपर हो गए? हाँ
0: मुझे दिखाओ ना।
1: अच्छा रो, अब मैं अभी आता हूँ। चलो चलते हैं, यहाँ से सीधे बस जाती है। फैक्ट्री की बस इससे भी अच्छी है, रोज हम उसी से काम पर आते जाते हैं।
0: तुम काम पर नहीं हो तो ऐसा कर जाएगा?
1: अरे मेरी सारी छुट्टियाँ बाकी हैं, इसलिए कभी कभी आप ले लेता हूँ। शादी के लिए सब छुट्टी बचा रखी है।
0: चलो फोटो, तुम मुझे वो हो।
1: ये देखो, ये रहा तुम्हारा कमरा।
0: कितना अच्छा है, बहुत पक्का है।
1: हाँ
0: और खिड़की भी है। अरे ये क्या है, ये खिड़की खिड़की?
1: तब पढ़ के बताओ।
0: तो ये बात है, तुमने कब रहे थे?
1: वो डिपॉजिट देना था ना, 500 रुपए सेठ सदानीलाल से कर दिया।
0: क्या सबूत कि तुमने 500 रुपए लिए 5,000 नहीं?
1: अरे मेरे साथ रघु भी गया था सेठ के यहाँ, सोसाइटी दफ्तर में सबको पता है, मैंने सबको बता दिया। शिकायत बिल्कुल नहीं, चलो किसी से भी पूछ लो, सब जानते हैं। जरूरत पड़ने पर रघु गवाही दे सकता है। हाँ
0: तो
1: चलो।
2: अरे आओ आओ सिंधु भैया आओ, मेरी चिट्ठी मिली होगी। क्या भैया ब्याज देने आए हो तुम मिला के?
0: ब्याज देने नहीं, पूरा हिसाब करने आए हैं।
2: आप सिंधु की कौन है? बेबी कुल मिला के
0: मैं इनकी होने वाली वो हूँ।
2: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। कुल मिला के
0: इन्होंने कितना कर्ज लिया था?
2: कर्ज को की है बहन जी, जो लियो है दे दे दो। फिर भी आप कह रहे हैं तो बताए दे तो बहन जी, 5,000 रुपए लिए थे इसने।
1: 5,000 रुपए?
0: आप चुप रहिए। हाँ तो देखिए, 5,000 में 5 के आगे कितने शून्य होते हैं?

साथ जो रघु जी आए थे वो भी अंगूठा साथ है। उन्होंने भी कहा है कि 500 रुपए लिए थे, सारी सोसाइटी को भी मालूम है। अच्छा, अब हम लोग पुलिस थाने जाते हैं।

le charge de cette manière,

सुनाएं जैसे महत्वपूर्ण स्थान जो कि शाम और प्रकृति दोनों की मदद करते हैं आज काफी बदलाव दोनों की

मिशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण

और मिशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और इस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेज, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।

हाईवे जो स्ट्रीट की बहुत लंबे समय से डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं, जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलॉन्ग द कोस्ट कैसे हो, ये लंबे टाइम से उड़ीसा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया,

का अंतिम गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार छवा जी ने, जिनका नाम है सिलसिला, गीत जावेद अख्तर का है, संगीत श्रीहरि का।

लिए उस घर की जिसे देखकर दिल मुस्कुरा उठता है, जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाते हैं और वो हमारे दिल में बस जाता है।

1977 को बिहार के जमशेदपुर में हुआ, जो अब झारखंड में आता है। पिता राघवन टाटा स्टील में मैनेजर और माँ सरोजा बैंक में मैनेजर थी। आर माधवन की फैमिली जमशेदपुर में ही रहती थी, इसी वजह से इनकी स्कूलिंग यहाँ से पूरी हुई। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद महाराष्ट्र में मौजूद कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स से बीएससी में ग्रेजुएशन किया और वो पढ़ाई में बहुत ही शानदार स्टूडेंट थे। और ग्रेजुएशन करने के बाद मुंबई के किशनचंद चेलाराम कॉलेज से पब्लिक स्पीकिंग में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। पढ़ाई के अलावा आर माधवन पढ़ाई के दिनों में एनसीसी कैडेट भी रह चुके थे और एनसीसी ट्रेनिंग भी उन्होंने ली। लाइफ में एक ऐसा समय भी आया जब वो मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था।

सिनेमा का रोमांटिक हीरो बना दिया और फिल्म का हिंदी रीमेक साथिया के रूप में बना

प्यार याद। इस फिल्म के माध्यम से शिशु नौजवान का जिंदगी दिखाया, जो प्यार में टूटा तो जरूर, लेकिन फिर उस टूटे दिल को संगीत के सुरों में ढाल दिया। एक तरफ इमोशन था तो दूसरी तरफ रफ्तार से भागती जिंदगी, और इन दोनों के बीच माधवन ने अपनी एक्टिंग से वो बैलेंस बनाया जिसे देख दर्शक बस यही बोल

थी जो आर माधवन के लिए सिर्फ एक रोल नहीं बल्कि एक क्रिएटिव सफर थी। राम जी लंदन वाले ये लेकिन हिंदी वर्जन को माधवन ने सिर्फ निभाया ही नहीं बल्कि संवादों से लेकर क्लाइमेक्स तक खुद लिखा खुद संवारा। बावर्ची नाम से शुरू हुई यह फिल्म बाद में राम जी लंदन वाले बनी और खास बात ये थी कि निर्देशक संजय दया

शहरी उन्होंने निभाया फरहान कुरैशी का किरदार। किताबों में उलझा जरूर था लेकिन उसके भीतर बसता था एक कलाकार का दिल। एक फोटोग्राफर की उड़ान, फरहान की दुविधा, उसके डर और अंत में उसका हिम्मत से किया गया फैसला, ये सब कुछ इतना सच्चा लगा कि मानो हर दर्शक को अपनी ही कहानी उसने दिखाई दी। माधवन ने फरहान को सिर्फ निभाया नहीं बल्कि जिया, और उसी वजह से आज भी वो किरदार

की प्रेम कहानी तनु वेद मनु। इस फिल्म में आर माधवन बने डॉक्टर मनु शर्मा, एक शांत संकोची लेकिन दिल से बेहद सच्चे प्रेमी। उनके सामने थी कंगना रनौत एक बिंदास और बगावती तनु के रूप में। मनु का किरदार जैसे सादगी की मिसाल था, वो आवाज थी। और फिर साल 2015 में इसका सीक्वल आया तनु वेद मनु रिटर्न। फिल्म ने तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इस बार माधवन ने

से दूर हो गए। इस दौरान उन्होंने खुद को रिफाइन किया, एक्टिंग और लुक्स पर काम किया और साल 2017 में धमाकेदार वापसी की फिल्म विक्रम में उसने पुलिस अफसर का किरदार निभाया, जिसे क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों का प्यार मिला। इस थ्रिलर को निर्देशित किया था पुष्कर गायत्री की जोड़ी ने, जिन्होंने साल 2017 में सिनेमा को एक नई ऊंचाई दी। माधवन बने ईमानदार पुलिस अफसर विक्रम, गंभीर, सुलझा हुआ और भीतर से सवालों से घिरा हुआ। वहीं विजय सेतुपति के निभाए किरदार वेधा ने अपनी कहानियों से विक्रम की सोच को ही हिला दिया। ये फिल्म जितनी थ्रिलिंग थी उतनी ही सोचने पर मजबूर करने वाली। तभी तो साल 2022 में आई इसकी हिंदी रिमेक, निर्देशन फिर से पुष्कर गायत्री के हाथ में था। इस बार विक्रम बने सैफ अली खान और वेधा बने ऋतिक रोशन। फिल्म में

के दृढ़ संकल्प और जुनून के प्रतीक के रूप में पेश किया। फिल्म थी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ये फिल्म तीन भाषाओं में एक साथ बनी, इंग्लिश, तमिल और हिंदी। इस बार माधवन ने सिर्फ पर्दे पर अभिनय नहीं किया बल्कि इस फिल्म को लिखा, निर्देशित और प्रोड्यूस भी किया। कहानी थी एक सच्चे हीरो की, इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायण की, जिनकी जिंदगी में विज्ञान जितना बड़ा था उतना ही बड़ा था अन्याय से लड़ने का हौसला भी। माधवन ने इस किरदार में नंबी सर की प्रतिभा, पीड़ा और आत्मसम्मान को कुछ इस तरह दिया कि हर दर्शक की आंखें नम हो गई। रॉकेटरी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और कांस फिल्म फेस्टिवल में भी इसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये थी माधवन की सबसे महत्वाकांक्षी और दिल के करीब परियोजना, जिसने साबित किया कि जब सच्ची कहानी और सच्चा कलाकार एक साथ मिल जाए तो सिनेमा इतिहास बन जाता है।

के दौरान भी थी। वो एयर होस्टेस थी और दोनों ने साल 1999 में शादी की। उनका बेटा वेदांत माधवन एक इंटरनेशनल स्विमर है और भारत के लिए उसने स्वर्ण पदक जीते हैं। माधवन अपने बेटे की सफलता को सबसे बड़ा गौरव

उसे अपने अभिनय की गहराई से सबको चौंका दिया। साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म शैतान, इसमें उन्होंने तांत्रिक की भूमिका निभाई जो रहस्यमय और भयावह शक्तियों से जुड़ा हुआ है। इस किरदार में उनका खामोश डर, रहस्यपूर्ण मुस्कान और संजीदगी ने दर्शकों को डराया भी और बांधी भी रखा। ये भूमिका उनकी अभिनय क्षमता का एक नया आयाम दिखाती है। इसके अलावा वेब सीरीज दी कपल्स में उन्होंने एक तलाकशुदा लेखक की भूमिका निभाई जो अपने रिश्तों और समाज की विडंबनाओं से जूझ रहा है। इस सीरीज में उनका व्यंग्यात्मक अंदाज और ईमानदार प्रदर्शन एकदम नया अनुभव था। साथ ही 2023 में नेटफ्लिक्स की बहुचर्चित वेब सीरीज द रेलवे मैन में उन्होंने भारतीय रेलकर्मियों के संघर्ष को दर्शाने वाले एक अहम किरदार में दमदार अभिनय किया। हिसाब बराबर में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज के ज्वलंत मुद्दों को बारीकी से प्रस्तुत किया। माधवन का मानना है कि फिल्मों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि प्रेरणा देना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना भी है।

फिल्म के लिए आईफा और जी सिने अवार्ड का नॉमिनेशन उन्हें मिला। थ्री इडियट्स फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिला बेस्ट फीचर फिल्म का प्रॉपर्टी के लिए। इसके अलावा उन्हें यूएन द्वारा यूथ आइकन के तौर पर सम्मानित किया गया। उनकी छवि एक जिम्मेदार अभिनेता और संवेदनशील इंसान की है। माधवन एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने मेहनत, लगन और ईमानदारी से इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। उम्र के इस दौर में भी उनका चार्म और व्यक्तित्व उन्हें किसी भी नए अभिनेता से कम नहीं ठहराता। वो आज भी हर दिल में बसते हैं, युवाओं के फेवरेट हैं और हर भूमिका में एक नई ताजगी लेकर आते हैं।

किसी का प्यार भरा नमस्कार। माना कि बहुत है आप हसीन, दिल को ठुकराया करते हैं। हम किसी के दुश्मन को हम में से बहुत लोग अपना जलवा बरकरार रखते हैं और रखना भी चाहिए। तो जलवे को बरकरार रखिए बरखुरदार। पना निजामी कानपुरी फरमाते हैं, वो आँख या जो जो आए तो रुख पर ठहर न जाए, वो जलवा क्या जो दीदा वो दिल में उतर न जाए, वो जलवा क्या जो दीदा वो दिल में उतर न जाए।

जाते हैं और अस्थि जुदा होते हैं। लेकिन खुशी के जलवे तो मशहूर हैं। अमीर निमाई फरमाते हैं, इलाही क्या कयामत है वो जब लेते हैं अंगड़ाई, इलाही क्या कयामत है वो जब लेते हैं अंगड़ाई मेरे जख्मों के सप्ताह के

करते थे। खुदा जाने आज उसका कैसा जलवा होगा, कुछ होगा, नजाकत होगा और जमा होगा। वही जलील मानिकपुरी कहते हैं, मेरी आंखों से मेरे यार का जलवा देखो, चश्मे मजनू से बाहरे रुख ए लैला देखो। मेरी आंखों से मेरे यार का जलवा देखो, चश्मे मजनू से बाहरे रुख ए लैला।

कभी पर्दा कभी जलवा ये तमाशा किया है। सामने नृत्य करने वालों के लिए अपनी महबूबा के हुस्न का जलवा

हैं अपने महबूब का जलवा देखने के लिए, उतना ही जलवा दिखाने वाला भी बेताब होता है। जो के नजारा मुफ्त में बदनाम है, खुद न खुद बेताब है, जलवा

लेकिन एक जिंदा आशिक खुदा से यही कहता है, कोई से जलवा खुदा के वास्ते दीदार के काबिल दिखाई दे, कोई से जलवा खुदा के वास्ते दीदार के काबिल दिखाई दे, संग दिल को मिल चुके हैं हजारों, कोई अहले दिल से दिखाई दे, कोई